अंडा अंडा कोमड़ी फसला कचा जा ठंडा हो, कोमड़ी आधी का अंडा हो, उत्तर सांगा निकाय पण मांगा, दाऊ नका माला डंडा हो, फसला कचा जा ठंडा हो, कोमड़ी आधी का अंडा हो, उत्तर सांगा निकाय पण मांगा, दाऊ नका माला डंडा हो, चला मजे न राहू सारे हसबू या दुनियेला, चला मजे न राहू सारे हसबू।

0: योर प्रॉब्लम?
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है,
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखे
0: दोनों

0: अपने ब्याज हमें आसमान पर ला बैठाया।
1: देख लीजिए,
0: कहीं गिरा ना दीजिएगा।
1: तो फिर संभाल के रहिएगा।
0: इससे ज्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं।
1: एक
0: खुदा
1: और दूसरी
0: प्यार।
1: मुझे डर है कहीं आप उड़ी ना लगे। आइए
0: एक एक एक एक दिल की बात सुनती जाइए।
1: एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए।
0: मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

0: तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ